0: करके अपन जिम्मेवारी पूरा कर रहे हैं और गुम एक के काम अपन काम कर रहे
1: हैं

0: आज शुरू करे। अन्न किनभने साग सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सम्पर्क 2 वर्षसम्म स्तनपान जारी गरी।
1: स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रिया चलचित्र जारी सन्देश।

लगा तो कहेगा अनुभव की कमी का उपाय में ध्यान दीजिए रास्ता पता मुझे पता गया आई सात पाप दाल गुजरा तारा मछली शिकार वो फल फूल अवनित खाना नियमित रूप में खाई जो फूट कर होगी संतुलित खुला खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ होने से कल हो रेडियो गुरुवार को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यालय बढ़िया ऐसी जनहित निगरानी संदेश आमार दूत बच्चा को पहले औषधि हो जन्म को एक घंटा भीतर परिवार से काम शुरू करो छह महीना समय आमार को दूध मात्र हो।

नमस्कार जय गोपाला हम अपना कार्यक्रम में आप बहुत स्वागत है और एक पुष्पा चौधरी हमारा कार्यक्रम रेडियो गोपाल एफएम को नब्बे दशमलव सात मेगा हर्ट्ज़ से प्रसारण होगा और समय का राजापुर के साथी एफएम और रेडियो टाइगर हम से भी प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम में हमारे निर्मला प्रोग्राम से निर्मला विषय पर होगा छलफल करती ये कार्यक्रम से प्रसारण होगा। हमारा इस कार्यक्रम में विशेष लेकर स्थानीय अथवा सरकारी निकाय में सबको सर्वसाधारण पहुंच पाए सेवा प्रदायक संस्थान को जवाबदेहिता पारदर्शिता विषय में हमारा छलफल करती। आज हमारा बांसगढ़ नगरपालिका नगर प्रमुख खड़का जी से

स्क्रीन मतलब भागीदार बढ़ाने जाए चार रूपये प्रमाण उपलब्ध है और प्रॉपर्टी जड़ी बूटी उनका उपलब्ध करना आज के साथ कोई किसी भी आवश्यक नुकसान कम सके हमने प्रॉपर्टी जड़ी बूटी उद्योग माना

0: Some people are these.
1: स्वास्थ्य सेवा मापक की पत्रता नागरिक स्वास्थ्य पद के हमारे की पत्रता घटी वैमानिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वा पूर्वी यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पदक ऐसी कौशल अस्पताल घासखड़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
2: अस्पताल सेवा
1: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
2: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेर जांच कैले
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
2: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध बा प्यारालाइज शिशुको मुख बाँधिना नशा दाब मिलक हाट द्वारा अन्य चलना बिरामीको नक्ला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्टर थेरापी विधि मसिन उपचार
1: कैले बिरामीसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्टर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
2: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएको असहाय नागरिक एक पल्ट महिला अनाथ

संध्या 6 बजे थारू भाषण हमारे संदेश में अभ्यर्थियों बाटी तम समय पार्टी सभा

0: जंक्शन टाइमिंग नए स्वस्थ है सुरक्षित परिवार
1: स्वास्थ्य कार्यक्रम अध्यक्ष जनता

कर्मियां से मुक्त कर्मियां से फिर आपके नेटवर्क समस्या को प्रेरणा प्रक्रिया थी उस समस्या समाधान का आत्मनगर पालिका से प्रेरणागत प्रक्रिया था वहां वाकर लाख नगर पालिका से पूरा कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार श्रमिक बीमा लगाए कार्यक्रम पर अलग जानकारी श्रमिक संचाल से बिना थारू मुक्त कमैया स्कूलवासी तथा औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत

अनुसार रोजगार का गारंटी मर्यादित काम सम्मान काम का सम्मान ज्यादा तथा श्रमिक बीमा कार्य में बताया कर मार्ग सहित 500 स्थान तय पुस्तकाल से शुरू किया गया है। नगर पालिका का समारोह में पुखा कोई सभा में परिणत हुआ। भूमि प्रशासन कार्यालय पर या अधिकतर कार्यालय पर समय मानक पदार्थ अवस्था मंत्री कर्मचारी सहित प्रशासन प्रहरी नियंत्रण में रहेगा। सुबह तीन पर कार्यालय के काम या पीटी द्वारा थाना सूचना के आधार में जिला प्रशासन

निकासी पर आशा चले कार्रवाई का सवाल चालक बार बोर्ड के नगर पालिका सात निकासी बहादुर चौधरी कोरिया नगर पालिका छह निकासी संतोष शर्मा कोरिया नगर पालिका चार निवासी दुर्गाया चाली तथा सुधा थारू रहाट मापन भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरों से नियंत्रण में लेकर घटना को संबंध में थप अनुसंधान अंतर्गत जिला प्रहरी कार्यालय पर तैनात प्रहरी नायक परीक्षक रेशम द्वारा जानकारी हंगेरी प्रदेश का सामाजिक विकास मंत्री चंद्रकांत मिश्रा तालीम से प्राप्त ज्ञान सीखने के भार में लागू करते आत्मनिर्भर बना सहभागी बन आगे करवाट सरकार लक्षित समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण स्वरोजगार परिवर्तन तथा उत्तम विकास का लाभ असीम सीखना कार्यक्रम का निरंतर का मिला प्रतिबद्धता भाजपा सामाजिक विकास डिवीजन कार्यालय पाके का आयोजना में मुक्त कमैया कुंभरी सुकुम्बासी दलित आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सीमांत के पिछड़ा वर्ग विपन्न तथा जोखिम अलग समुदाय कलाप संचालन कैगिनत पार्टी उद्यमशीलता विकास तालीम का राजकपुर में समापन कार्यक्रम में बैठी मंत्री ने घोषणा तालीम ने अवसर का सफल बनाए सहभागी मेहनत व्यवहार करीब आवश्यक तालीम में 74 जना सहभागी सहभागी उत्तम संचालन व्यवसाय योजना वित्त व्यवस्थापन तथा आय आर्जन का विभिन्न विषय में व्यवहारिक ज्ञान व सीट प्रदान करोजना आयोजित चलेगा कार्यक्रम में केन्द्र गांव पालिका का अध्यक्ष जमान सिंह केसी तथा भारतीय उद्योग पालिका संघ का अध्यक्ष कृष्ण कुमार रेग्मी तालीम में से प्राप्त ज्ञान और व्यवहार में लागू कर सफल उद्यमी बना सहभागी शुभकामना दिलवाट कार्यक्रम का अध्यक्षता सामाजिक विकास डिवीजन कार्य पार्टी का प्रमुख ऋषि राम शर्मा प्रशिक्षक राजाराम थारू तालीम में शिक्षक सीखना व्यवहार में उतार कर आय आर्जन और स्वरोजगार सिलसिला में प्रेरित हुए सहभागीगण अर्जीकरण बाट सहभागी प्रत्येक तालीमों से शिक्षक ज्ञान सीख अनुपथन व्यवहार में लागू करते उत्तम संचालन प्रतिबद्धता व्यक्त कर बाट कमैया मुक्ति घोषणा हुआ 25 वर्ष बीतिया खबर के मुक्त कमैया उपलब्ध पुनः स्थापित हुई शिखर पर मुक्त कमैया उपलब्ध प्राणी गुनासो व्यक्त करवाट मुक्त कमैया समाज कैलाली का आयोजना में आज भस्ती नगर पालिका में अलग 26 नगर मुक्त कमैया दिवस का अवसर में बैठी मुक्त कमैया समाज का केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी पांच जिला में आगिन 2375 जना मुक्त कमैया पुनः स्थापना का आशा मनोरंजन

आपकी बात अब शर्मा 1082 जमा मुक्त कमाया होगा पुनर्स्थापना से पंचीत रवत मुक्त कमाया समाप्त समय होगा पुनर्स्थापना होने बाकी रवत मुक्त कमाया होगा कमाने में 953 कंचनपुर में 329 स्थान में 48 जमा पुनर्स्थापना होना बाकी बाटिया में 1245 जमा मुक्त कमाया पुनर्स्थापना से पंचीत रवत मुक्त कमाया समाज का दावी बाटस नेपाल नेपाल 2057 साल श्याम दी गते मुक्त कमैया मुक्ति घोषणा कर

निर्माण व्यवस्था हेतु सार्वजनिक खरीद ऐन 2063 का प्रस्ताव संशोधन प्रावधान विकास क्षेत्र में कई

0: espantava सहयोग करना और कल्पना कराई घर पर यही लेकर मौसम समय आयोजन और पत्र प्रेरणा पर भी कारण के बिना निर्माण व्यवसाय को कटाएगा सब श्रोता ने निर्माण व्यवसाय को उत्साहित करेगा और कल कटाएगा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ को पद से समर्पित करेगा संशोधित व्यवस्था में औसत पत्र प्रणाली में प्राथमिकता राष्ट्रीय समाचार सुनना हमारे संदेश का समय वायला दुर्गा हमारे संदेश वायना से पहला मुख्य मुख्य संदेश एक द्वारा और क्या कर पास हुई मार्च 26 उक्त समय दिवस निर्गत मार्च अवसर की रैली तथा शुभकामना आदान प्रदान कई हमारा जिला वही मान व्यवस्था हुआ सार्वजनिक खरीद एन 2063 का दूसरा संशोधन पूर्वधार विकास क्षेत्र में कई जिला में ऐतिहासिक सुधार लगभग हुई मार्च अब हमारा संदेश कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमारा संदेश लिखाने बाकी तब समग्र समाचार कक्ष का सब कुछ रविशंकर कुमार रेडियो प्रधान जय बाबा
1: से सपने पर सजावट रहूँ मैं बता सकता हूँ जो कि यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी के लिए रास्ता नहीं है मैं लिख रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज हूँ क्योंकि हम बहुत बताते हैं रेडियो को गाना रखिए पुराने के 10 मिनट 7 मिनट

है। कृषि विभागका उप महानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाका अनुसार देशका करिब 3 लाख बढी हेक्टर धान खेती योग्य जमिन मध्ये हालसम्म 9 लाख

चार पर रन को समान लक्ष्य निपाल सिंह अपने बॉलर दुर्भर्मा एक विकेट गुमाएर बितायो।

बासी शांति विचार वो दुकान मेटी तो साबन के खाद देखी बामा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट से बेटी बा ट्रांसपोर्ट के कारण लंबा में पाइप में बैठे थे पिछला साल दवाई से आइलेट बेच गई था कटोपाई थाना हमारा साथ रेस्क्यू करना टीम या साथ रेस्क्यू करना मनाई से बात निकल गए इधर सात दुबार क्षेत्र में से उन्होंने प्रजाति

ये बात देखकर हमारा नमक राशि में श्री गिरी रसिल भाईपन का मध्य भेजी था। चाहे वो रसिल भाईपन न चाहिए पश्चिम पैठन या अजिंगर देखकर पकड़ना फिर भेजी था। उसे देखा पता हो या तो उसे मिलते हुए रसिल भाईपन होती है अजिंगर होते होकर फोन का हेयर का फिर छुट्टे से जाए बागेश भेजी था। हेमोटोक्सिस जो होता हमारा भाईपन का क्या हमारा वो चाहिए अगर एकदम प्राप्ति बनाना रक्त साफ करना रक्त श्राफ होकर कितने हमारा असर करना वो बीस अपने कितने हमारा असर करना मेरी स्टाफ को हमारे यहाँ ब्रेन का आयल पाचर या तो पीटी हरान करना जांच करे थी पीटी हरान करना नियम कर से ताकि मैं वो करेगा प्रति मिनट भर वो प्रिंटिंग टाइम करना टेस्ट करे थी वो हमारे अगर कितना प्रतिनिधा करना हमारा मकर विषय में आइडिया देखा हमारा वो लेखना हमारा कंटेस्ट में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में

इसलिए घेरन हो तो काम करना कला बिग फोर हो। बिग फोर में सारा स्किल भाइपर खाना नेपाल में नहीं पा जाए और देने का कोबरा करण करीब हो रसे भाइपर में फिर हो कोई भी करीब ग्रीन टी भाइपर में फिर कई साल हमारा चार से के आधा पात्र के सेल लगाई तब तीन लगा तीन इंची इसने घेरन नहीं दे लगाई सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में ढेर मरे चुका रहा

0: केवल आपको एकदम मजा था, लेकर मेकानिक जन पता नहीं था जैसा कहा जीना काटे ने मीठा उन्होंने नंबर देखा मीठा की सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी बाधा कर से एम्बुलेंस में सबका स्वास्थ्य कर्मी पठाकर मीठा की सैकड़ों घटना सर्वप्रथम से उपचार के नाम खोज एम्बुलेंस जो चाहता कारण नहीं हो चाहे वो मोटरसाइकिल का कारण नहीं हो सैकड़ों समय खराब निकल था समय में झटके सर्वप्रथम से उपचार के नाम उजाड़ पता दे रहे
1: उष्णकटिबंधीय भौगोलिक क्षेत्र दरमान मोटरसाइकिल स्वास्थ्य मंत्रालय राजीव गर्गमा सर्वप्रथम सी कृषि वहां इसने बैक फोकस कार्यक्रम नेपाल सरकार ने कार्य कर सर्वप्रथम से

खराब पर्यावरण के अभिन्दा हुई कला सन्देश सहित कपड़ा करे से ज्ञान एक महत्वपूर्ण सन्देश कारण करे से सब का डर से क्या करता था महत्वपूर्ण

विकार होती नहीं वो तब तक सभी का दिखना तो नहीं वो तो तब तक जब विकार से वो तब तक दिखे मच गए तो वो क्या करेगा तो वो आज देखो वो एक समय में अभी तक बैठे थे कि कोई ऐसे निर्णय नहीं किया तो क्या पता लगता है जो भारतीय विपणन का शास्त्र है वो निश्चित ना बच्चे लगता है तो वो ना करे वो बार निशान में Thank you.

विश्वास भरना जानकारी पाएगा उपचार केन्द्र का आधिकारिक होम डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी